0: कर दोगुनी ताकत से पलटवार करने की सीख है।
1: ग्लासगो की 18 डिग्री सेल्सियस की हड्डियों को सिहरा देने वाली ठंड और इस सर्द मौसम के बीच भी राष्ट्रमंडल खेलों के मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना लगातार बह रहा है। इस महासंग्राम में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने हुनर और संयम के दम पर बस एक ही लक्ष्य के लिए जी जान लगा रहे हैं, देश के लिए एक अदद मेडल। पदक के लिए मचे इस रोमांचक घमासान के बीच खेलों के चौथे दिन आखिरकार भारत का स्वर्णिम खाता खुल ही गया।
2: Indeed, India's golden journey in the Glasgow Games began with the unflappable Mirabai Chanu comfortably defending her 48 kg title in weightlifting.
1: आइए जानते हैं 22वें Commonwealth Games में चौथे दिन क्या-क्या हुआ। Commonwealth Games 2026 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर खेल प्रेमी को इंतजार था। भारत के स्वर्णिम अभियान का आगाज उस नाम ने किया जिसने हर बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की सबसे बड़ी स्टार साई खोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
3: हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी की आंसू है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए।
4: Three times she has won golds in three consecutive games. Magnificent achievement.
1: जैसे ही पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया वो क्षण हर भारतीय के लिए गौरव से भर उठने वाला बन गया।
2: The legendary Mirabai began her title defense run with a failed attempt at lifting 82 kgs in the snatch before succeeding in lifting the weight. She then went on to set a Commonwealth Games record with a lift of 85 kilos, 10 kgs ahead of her nearest rival's best lift. The rift widened in the clean and jerk section as the Tokyo Olympic silver medalist succeeded in lifting 105 kilos in her second attempt to complete a total lift of 190 kgs and rise to the top of the podium as the tricolor fluttered proudly. She finished 22 kgs ahead of the silver medalist Ruth Nyong of Nigeria.
1: इस स्वर्णिम जीत के साथ साई खोम मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार राकेश थपलियाल कहते हैं,
5: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है मीराबाई चानू का और ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी, तब 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, फिर 2022 में 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब 2026 में 48 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है। तो मीराबाई चानू की जो कंसिस्टेंसी है वो एक बड़ी गजब की रही है कि लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये गोल्ड मेडल की शुरुआत यहाँ पर हो गई है।
1: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में मेडल के लिए अपनी प्रबल दावेदारी का परिचय भी दे दिया।
3: ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाला है तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे।
0: सच कहा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन वेट लिफ्टर्स के नाम रहा। मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया लेकिन उससे पहले पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांता सिंह ने अपनी चुनौती रखी। मणिपुर के स्वेट लिफ्टर ने निराश नहीं किया। कुल 271 किलो वजन उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले ऋषिकांता ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सिल्वर मेडल दिलाया। ऋषिकांता ने तीसरा प्रयास 121 किलो का सफलतापूर्वक हासिल किया और इसके साथ ही स्नैच में अपनी वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इन मलेशिया के अनिक कसदार ने भी अपने तीसरे प्रयास में इतना ही वजन उठाया। फिर बारी आई क्लीन एंड जर्क की, उन्होंने तीसरे प्रयास में 151 किलो भार उठाने की कोशिश की लेकिन बाजुओं ने फिर साथ नहीं दिया। अनीक अपने तीसरे प्रयास में 152 किलो वजन उठाकर न सिर्फ ऋषिकांता से काफी आगे निकल गए बल्कि गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ओवरऑल 273 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे। ऋषिकांता,
6: पहले मैं बहुत खुशी हूँ सभी मिलके, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर and

0: यंग वेलफेयर फेडरेशन, सभी ना हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इधर मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
1: भारत को दिन का दूसरा सिल्वर मेडल भी वेटलिफ्टिंग से मिला। ऋषिकांता के बाद मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। राजा और मलेशिया के मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार मलेशिया के बिदिन 299 किलो के कुल वजन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। राजा को 286 किलो के कुल वजन के साथ सिल्वर मेडल मिला। भारतीय मुक्केबाजों का दम कल दुनिया ने देखा। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की प्रीति का मालवी की मुक्केबाज देवरा मेटंजे के पास कोई जवाब ही नहीं था। पावरफुल प्रीति ने शुरुआत से ही विरोधी पर ताबड़तोड़ पंच चढ़े। इस तरह भारतीय मुक्केबाज आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी।
2: इट्स रियली नाइस टू हैव अ स्ट्रांग टीम बिकॉज इट डज मैटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग। सो रियली नाइस।
1: पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भी जादूमणि सिंह के मुक्कों का उनके प्रतिद्वंदी सुमामा रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। सटीक आक्रमण और शानदार बचाव के जरिए जादूमणि ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। राउंड ऑफ 16 में जीत के साथ जादूमणि भी जादुई प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में पहुंच गए। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आदित्य प्रताप यादव को राउंड ऑफ 16 के नजदीकी मुकाबले में उगांडा के बट्टे नुहू से 3-2 से हार मिली।
3: और अब बात लॉन बॉल्स की। भारत की रूपा रानी और पिंकी को दिन में खेले गए महिला पेयर्स के पहले मुकाबले में पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को टाई ब्रेकर में 3-0 से मात दे दी। इस हार के बावजूद भारत की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी, लेकिन देर रात हुए दूसरे आखिरी ग्रुप मुकाबले में विमेन्स पेयर्स के सेक्शनल मुकाबले में पिंकी और रूपा की जोड़ी एक सेट से आगे होने के बावजूद टाई ब्रेक में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। वहीं पुरुषों के लॉन बॉल्स के मुकाबले में भारत के पुतुल सोनोवाल को रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष एकल लॉन बॉल स्पर्धा के सेक्शनल मुकाबले में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पुतुल का आगे बढ़ने का सपना खत्म हो गया।
4: In swimming, the men's 4x200 relay team made it to the final before coming 6th in the event. Meanwhile, Tapan Mohanty finished 15th out of 18 finalists in the men's all-round final in gymnastics with a combined score of 70.100.
1: ग्लासगो में जिन खेलों में भारत की इस बार पदक की सबसे ज्यादा दावेदारी है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। एथलेटिक्स में सबसे पहले ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में उतरेंगे। उन्होंने हाल में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का समय का बैरियर तोड़ा है। आज ही लॉन्ग जंप में भारत के पदक की बड़ी उम्मीद मुरली शिशंकर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में फील्ड पर होंगे। शिशंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था। 110 मीटर हर्डल रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले तेजस सिरसे भी खेलों के 5वें दिन मेडल की बड़ी उम्मीद होंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक के लिए दोबारा देर रात ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस हाई जंप में भी आज मेडल मुकाबला होगा। भारत की तरफ से सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम ज्योति शंकर और तेजस्वी शंकर की चुनौती होगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कुशारे देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने इसी महीने मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ऐतिहासिक तीसरा स्थान हासिल किया था। बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तेजस्वी शंकर भी इस साल पदक का रंग बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। ज्योति शंकर की चुनौती को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की तगड़ी चुनौती रहने वाली है। विमेन्स शॉटपुट F57 कैटेगरी में शिल्पा KS और शर्मिला पदक के लिए अपना सारा हुनर और ताकत झोंक देंगी। पुरुषों की T38 कैटेगरी की 100 मीटर रेस में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। साल 2026 भी उनके लिए खास रहा है। इस साल उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता।
4: लेट्स नाउ टेक अ लुक एट व्हाट विल बी अ बिजी डे फॉर इंडियन बॉक्सर्स टुडे एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। In the 60 kg category, Sachin Sivach will take on England's Will Hewitt. The 2016 World Youth Champion and 2026 Asian Championship silver medalist uses his 5'10" frame for a sharp back foot counter punching style and his right.

0: riding high on form and confidence, coming off a solid 4-1 win over former CWG medalist Canada's Al Ahmadiyya. His long reach will be key to keeping the aggressive home favourite Hewitt at bay. Meanwhile, Ankush Panghal will take on Zalan Jan of Antigua in the men's 80kg category. The reigning 2026 national champion in the light heavyweight division is a heavy-handed front foot pressure fighter with strong inside footwork. He will be making his games debut and Ankush will look to establish control early with body shots against Zalan Jan. Meanwhile, in the women's section, Sakshi Chaudhary will be taking on Lethabo Modukanele from Botswana in the 51kg weight division. Sakshi comes into the event as a strong medal contender. Her high volume and relentless pace makes her a strong favourite against Botswana's experienced Modukanele if she gets into a rhythm from round one. Back in the men's segment, Sumit Kundu will also be in action against John McConnell of Northern Ireland. Sumit got a bye in the round of 32 and against Northern Ireland's John McConnell, he will be facing a tough challenge. He relies on his high tempo inside game and power combinations, and this will be a matchup to look out for.
1: आज का दिन भारतीय तैराकी और पैरा तैराकी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूल में भारत के कई खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे और देश को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अनुभवी तैराक सजन प्रकाश एक बार फिर पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उतरेंगे। पहले हीट में उनका लक्ष्य फाइनल का टिकट हासिल करना होगा, जबकि क्वालीफाई करने पर देर रात होने वाले फाइनल में उनकी नजर पदक पर रहेगी। वहीं युवा तैराक आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फास्टेस्ट हीट में उतरेंगे, जहां लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण रेस में उनका धैर्य और गति दोनों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही पैरा स्विमिंग में भी भारत की उम्मीदें स्वातिक पाटिल पर टिकी होंगी। स्वातिक पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB9 वर्ग की हीट में हिस्सा लेंगे और शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए पदक जीतने की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूल में भारत के लिए हर रेस बेहद अहम होगी। सजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और स्वातिक पाटिल के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। उम्मीद होगी कि ये खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाए बल्कि भारत के पदक अभियान को भी नई रफ्तार दे दें।
0: More medals in weightlifting will be on the cards today as the Indian lifters aim to continue the momentum. Gyaneshwari Devi will be making her debut in the Commonwealth Games and taking part in the 53kg category. She won bronze at the Asian Championships and her personal best of 194 kilos makes her the top-ranked lifter in the Commonwealth. Meanwhile, Vindhyarani Devi, a silver medalist at Birmingham, will be looking to make it two podiums in two as she enters the stage in the 58kg final. In the men's segment, Valluri Ajaya Babu will be the dark horse in the 79kg category.
2: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में वुमेन वॉल्ट में भारत की प्रतिष्ठा समानता की चुनौती होगी।
0: Now, let's take a look at the medals tally. Australia, top with a grand total of 39 medals, and England are a distant second right now. India, meanwhile, with 4 medals and 1 gold, are now at the 8th position as the action heats up.
1: आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ वापस जुड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा अपडेट के साथ इसी समय पर। तब तक हमारी पूरी टीम प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी, संपादक वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मैं कविता शर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
3: நேர்கள் இதுவரை காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தினசரி நிகழ்வுகளை கேட்டீர்கள். திருச்சி வானொலி அலைவரிசைகள்ல இப்ப உங்க எல்லாரையும் ஆட்டம் போட வைக்க வருது போடு ஆட்டம் போடு.